0: तिन क्यामेर छोरालाई गीता हातमा पाल्छ
1: रोक्छ नि बाली के
2: हल्कै
1: उज्जा मुर्दा
3: राम्रो मान्छे।

पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो। अहिले दिउँसो 4 बज्यो।